ऐसा भजन भी आता है, कहो बेनती अपने सतगुर पाहे, बेनती करो गुरु अगे, गुरु नूं अपना जान के, उपरा नहीं, गुरु गुरु नूं अपना जान के बेनती करो, कहो बेनती अपने सतगुर पाहे, अपना जान के बेनती करो। साखी बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत बार पढ़ सुन विच आउंदी है, उच रहस है। पशौर तो आई संगत, गुरमुख परिवार, एक छोटा जा बच्चा, उसकी दोहरी दस्तार सजाई हुई, दोहरी जो मां अपने बच्चे नूं गोद च बिठाड़ के जपजी साहब का पाठ सुनावे ना, गोद च लै के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बच्चे नूं सुनावे ना, वो बच्चा डोलूगा नहीं, सब आखो सकना, बच्चे का कोई कसूर नहीं। मत कोई समझे साडे बच्चे बिगड़ गए, साडे बच्चे बिगड़ गए, सारे बिगड़ गए जी, गाने वाले असी हैं, असी ध्यान नहीं देते, जमदे बच्चे गोद च लैके पुरानिया मातावां कर दिया होंदिया सी, सब आखो ना चक्की पीढ़ी ना सुख नहीं पाना, ते गोद च बच्चा होना, उस चक्की नहीं रही, बच्चा गोद च है, मां चरखा करती है पाठ कर रही, बल्कि पिताजी पासों ऐसा वचन भी सुनिया, इतिहास भी जिक्र आता, जदों बीबी लंगर तैयार करती है ना, उदों जपजी साहब का पाठ करती, मूल मंत्र का पाठ करती, जेड़ा लंगर पाठ करदिया तैयार किया जाए तो वह अमृत बन जाता, जेड़ा खाऊगा उसे भी असर होगा, जे फिल्मी गाने लाए हुए कि कोई अड्डा टेलीविजन वेख्या जा रहा ना, प्रसाद तैयार हो गया, उ असर होना, बच्चे ने जो मर्जी बना लो, चाहे भक्त बना लो, दादा बना लो, एवं तो नहीं क्या जननी जने भगत ही जान, कहे दाता कहे सूर, ये नहीं नहीं तो जल्दी बाजर ना ही पैम, बच्चे वाल जिस मां बाप ने पूरा ध्यान नहीं दिता, वो अपने फर्ज तो गाफड़ के, सब आखो सतनाम श्री वाहे, फिर आखो सतनाम श्री वाहे, अज तो शुरू कर दो, जे करते ने धनबाद अमृत वे उठ के, जिन्ना टाइम है, ड्यूटियां बहुत सख्त ने इधर अमरीका में, बहुत सख्त ड्यूटियां ने, समय सिर जाना पैंदा, जिन्ना टाइम मिले जो मिले, सवेर वे मिलता शाम को मिलता जो भी मिले, बच्चे नूं गोद च लैके सिमरन करो, जब हिसाब दा पाठ असर हो, कन्ना चो वो गल हिरदे जाऊगी, एक पास पत्थर है उन लोहा छुआ दो तो सोना बन जाता, जे नाम हिरदे में वस जाए तो फिर भाई मनी सिंह ही बनूंगा, सब आखो सत नाम, फिर भाई तारू सिंह ही बनूंगा, हिरदे च वस गया, हूं ये बच्चा छोटा जहा, घर च वातावरण ऐसा सी, दोहरी पग बनी हुई, छोटा जहा बच्चा छे सत साल का, पिछौर तो आई संगत आनंदपुर साहब नमस्कार की, बड़ा खूबसूरत बच्चा, ते महाराज मौज में ही पूछने लगे, वो काका तेरा नाम की है, कहता जी डोगा,

पावन शब्द पावन राग साडे सत्कारयोग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी, भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी, जो भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने, वह भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने। साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी, वैनकूवर तो वीर जी आए ने, तो बड़ा दर्शनदार संगत दे होए ने। तो संगत वालों हुक्म आया सी कि राग 10 मिनट जरा ज्यादा लाने ने, तो ये सोरठ राग दे विच आप जी ने शब्द सरवण किया है। तो आओ दो तीन रीतां जरूर गायन करनिया सन, पर संगत वालों हुक्म है कि एक दो रागां दी बंदिशां जरूर सरवण करानियां हन। आओ इस तों पहलां एक रीत फिर गायन करांगे। पहलां आओ एक नौ मात्र दी बंदिश है, आप जी दे सन्मुख बहुत ही सुंदर है, पुरातन चीज है, और बड़े प्यार नाल सरवण करांगे।

0: श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोवर्धन नाराज भौतिक खाते जब माली तन सखाई मंत्र पूरा पढ़ते बस समुद्र का भाई छोड़ ले पखंडा
1: मांस खाने करे निवाज।

मंगन भी आए पंड होवे दोस्ती पंड चले रहा है पंड मुआ पंड पालिया पंड बंदा सोख मंदा खेत राजा पंडो ही पंड के पंडे बाजना कोई ना पंडे वारा कुछ जासू।

सो अंत सो बह अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तन मह आकाश क्या सर्व लोक पूर्ण पद पार दिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा ऐसा कर्म पौन पानी वह संतरमान नानक का पातशाह जिससे जाहरा पौन

बाछाई दसवीं बिना करतार ना कीर्तन मान जय अविनाश परमेश्वर जान रहो कहाँ पे जो आन जगत में दस असुर हर का आदि प्रपंच दिखाए सब निकल है पंजन करण।

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबू न जरूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए। चीत आवे ता सर्ग को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सदन भरंता, चीत आवे ता सब रंग माणे। चीत आवे ता चूकी काणे, चीत आवे ता सहज घर पाया। चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे ता सुन समाया। चीत आवे सद कीर्तन करता, मन मान्या नानक भग।

अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणप आगल भारा। हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगह शोभा से। मन मेरे गावर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता झोला। ज्यों बोहित भय सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन शीत काला हस दुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूरन होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे।

सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आने वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करता, प्रात काल सतसंग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहिंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं। गरीब नवाज साहब।

कहां वे हर जस सुनते बात लवे। गोबिंद सिंह वह जमपुर जावे ते गुरसिख अमृत वेले उठिया। अमृत वेले उठ के सतगुरु जी दी हजूरी अंदर पहुंचया ते गुरु की संगत अंदर बह गया। गुरु की संगत विच बैठिया होया सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दे पावन बचन सुनदा नहीं बल्कि नालदियां नूं भी नहीं सुनन दिंदा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ऐसे गुरसिख प्रथियाए लिखदे ने भाई हर जस सुनते बात चलावै। हरी परमात्मा दी बाणी सुनदियां हरी परमात्मा दी कथा हो रही होवे हरी रब परमात्मा दी गुरबाणी दा कीर्तन हो रहा होवे ते हर जस सुनदियां आपो विच गल्लां करदे रहन। गल्लां बातां करन वाले गुरसिख नूं महाराज कहंदे हन उसने जन्म व्यर्थ गवाया सतसंग विच बह के दूजे दा भी समा बर्बाद कीता। ऐसे गुरसिख नूं जमा दी मार पैंदी है सीधा जमपुर जांदा। हर जस सुनते बात चलावे हर जस सुनते बात चलावे गोबिंद सिंह।

गुरु का दिता होया निशान केसां दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसां दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउणा टोपी जी सिर दे उपर धर लैणी यह गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना वह रसना पवित्र होनी चाहिए वह मुख पवित्र होना चाहिए भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नू पवित्र रखे।

चोरी ठगी यारी दा पैसा एकत्र कर दे ना। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा ताने कठा करदा, ते जेड़ा गुरु नूं दसवंद नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उसनू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है उह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लेनी टोप ले लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिन तक बनी रहनी रोजाना उस नु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी

एक वाहेगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूबहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाक शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क पा

रोजाना दा उचारण वाहिगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहिगुरु वाहिगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहिगुरु करे, घर विच बैठा वाहिगुरु करे, रसना दे उपर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु दा टिका होवे, ते वाहिगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे। ऐसा वाहिगुरु हिरदे च वसे भई वाहिगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नू वेखिया, इस करके ए पूरने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

शस्त्रहीन एक बू न होई, रहतवान गुर का सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पांच ककार दिते ने ना खालसे नू पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ जित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहंदे मैं यह बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजां ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे भी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन एक

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इस दी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदिक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे ओ जवान गिनिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान होएगा।

गुरु के सिखां कोल धन अपार है ते फिर जिस कोल धन हुंदा है उसकी कीर्ति हुंदी है जस हुंदा है। कीर्ति नूं सुन के गुरु का सिख अहंकार विच ना आवे। सुख गुरु ने दिता है सुख नूं वेख के फुलिया ना फिरे औगण ना करन लग जे। धन कीर्त सुख राज बढ़ाई युवती जुत सुत विद्या बहु पाई। दूजी है विद्या विद्या पढ़ के विचारवान वड्डा हो जांदा है। किसे अहुदे ते पहुंच के गुरु ना भुल जावे। किसे अहुदे ते चंगे ते पहुंच के गुरु की सिखी ना भुल जावे। युवती सुत विद्या बो भाई ए सब दात गुरु की जाने। ए सारियां दियां सारियां गुरु कियां दातां जाने। दातां जान के मन अंदर रंचक मात्र भी अभिमान ना आवे ना अभिमान करे ना अहंकार करे। गरीब नूं

0: मेरो दर्शन नहे ते पापी त्यागे भिख।
1: वो ते अपने आप नू सिख ना मनन, जिन्हां ने केस मनाए हुए ने मेरे तां सिख ओ भी नहीं, जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया, जिन्हां ने पाहुल नहीं लई ते केवल केस धारण कीते हुए ने ते सबना मोहरे आके बहण दा दावा करदे ने। उची उची आवाज गुरु महाराज की दिती हुई बाणी दा याप जाप करदे ने पर आप पगाउंदे नहीं। केस रखे हुए ने पाहुल नहीं छकी हुई, खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया होया, वो भी मेरे सिख नहीं। ते जेडे सहज धारी ने जेड़े अपने आप नूं कहाउंदे ने वी केस मना के वी गुरु के सिखां सिखी अंदर है, वह मेरे सिख किवें हो सकते ने। साहिब गरीब नूं आज सच्चे पातशाह महाराज ने पवित्र वाक भाई नंद लाल नूं सारे दे सारे दिते। भाई नंद लाल ने यह वाक गरीब नूं आज सच्चे पातशाह जी महाराज दे लिख ले। संकल्प कीता गरीब नूं आज समयां दा समां बतीत हो जाएगा कि यह रहत मर्यादा सिखां दे अंदर ज्यों दी त्यों चलेगी। ते गरीब नूं आज कहण लगे नहीं, मेरे सिख मेरा खालसा राज दे अंदर आके भटक जाएगा। ते जदों ए भटकेगा खुआर हो जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, क्योंकि इस नूं राज पाउंदा नहीं। ते जदों इसने राज नाल प्यार कीता उदों इस दा प्यार गुरु नालों टुट जाएगा, सिखी दी दात मूलों निकल जाएगी। कुर्सी नाल प्यार हो गया ते गुरु नाल प्यार नहीं रहेगा, तख्त नाल प्यार नहीं रहेगा। जेड़ा गुरु के तख्त दे सामने अपनी कुर्सी डा लेगा ओ गुरु का सिख नहीं होएगा, ओ खुआर हुंदा चला जाएगा। ते फिर समयां दा समां बतीत होएगा, इतनी खुआरी होएगी, उस खुआरी नूं हरन वास्ते फिर गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कलकी रूप अवतार धारण करनगे। निरंकार दे हुक्मां मुताबक लिखिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने 33 सवाइयां च चरित्र

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे पवित्र होवे ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लह। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उन्हूं कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो उन्हूं छेक दिता जावे जिहड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख, इसने ये रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे। ते गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी दे वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान।

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कारी स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिले।

फिर लक्षण आशा जी दीवार लगा के कीर्तन समाप्ति उसपरंत अरदास गुरु के हुकुम नामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की सी भी आई दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है पर ए भी गुरु दी प्रेरणा सी तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है पर मैं तो इवें बेनती की कई प्रेमी कहन लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना ले लो ते असी भी जिन्हां जिन्हां ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित कीता है तो उन्होंने चाह दा लंगर तैयार किया है तो हुण प्यारी सात संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार दा कीर्तन भी पूरा हो तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दी वार दे कीर्तन दा भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दी वार तो ये छंद आपां आसा राग च लगाउंदे

धन गुरु अर्जुन देव महाराज दिन राति आराधा प्यारो निमख ना कीजे ढीला और ए भी गुजरी राग और गुजरी राग दी तुम्हार है।

सदा मन बलिया जियो। हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो, मिलिया जियो। मेरे मन तन प्रेम लगा हर ढोले जियो। मैं मेले सतगुरु

होआ आप दयाल मनो ना विसारियन साध जना के संग भौजल तारियन सागत निंदक दुष्ट।

भद्र लाले उग आशिक न दानद हेत कस्तीम पे या कूत दानद चश्म गौ हर बार इसका तर्जमा किसी ने पीता है पंजाबी देखा है

0: लाल की कदर जबरी नू है, इसे तरह यह सत्संग रूपी लाल अमृत कीर्तन की जड़ी कदर है और इसे प्यार वाली गुरमुख। दुनियावी गंदे गीत सुन वाला, भैड़िया थावां ते जाण वाला इस वस्तु नू क्या समझ। यह तो प्यारी सत्संग ओही जिन्हां दे अंदर गुरु का प्यार, जो प्यार की बख्शिश गुरु ने तुहाडे उत्ते की, गुरु नाल जुड़ के ते आप अमृत कीर्तन का रस्ता। सालसराय ने कहा जी अलै दसो खा तुहानू इह दात कित्थों मिली। मरदाने ने कहा यह दात मेरे मालिक की देन है। तुहाडा मालिक कौन है? मरदाने ने कहा जो दुनिया का मालिक, दुनिया उस दाते का नाम की है। मरदाने ने कहा सारी स्थिति उतारन वाला, कलयुगी जीवों के उधार करने वाला मेरा दाता धन गुरु नानक पाशाह। तुम भी आखो
1: धन गुरु नानक,
0: कोई रखना खाली नहीं, प्यार नाल सारे जपो धन गुरु नानक। गुरु नानक का नाम सुनिया मन हो साल सराय लाल मरदाना लाल से 100 रुपए की थैली लैके पहुंच गया। किथे मेरे धन गुरु नानक पातशाह जोतां जगा रहे, साहबां दे अगे जाके रख ते मत्था टेक के मरदाना कहण लगा महाराज आ लो अपना तिलसम। कोई तो तुहाडे लाल दा मुल एक मूली पे पाउंदा, कोई पा मठियाई ते कोई 100 रुपया दर्शन भेट। हजूर मुस्कुराता कहण लगे मरदानिया कोई समझ आई नहीं पास। मरदाने ने हथ ऐ मेरे साईं दुनिया नू सोझी पाण वाले हा, अज मैं गरीब नू भी सोझी, मैं डूब नू भी सोझी। अजू कहण लगी मरदानिया की है? महाराज आप कृपा करो तो मेरे धन गुरु नानक का पातशाह। कहण लगी मरदानिया एक कीर्तन का हीरा है, आप खुश ही हो, एक कीर्तन का हीरा की इसका अरैण की तरह मुल पंच, हलवाई की तरह मुल पंच। मरदानिया जी ने कीर्तन का मुल पा दिता है, उन्हें कीर्तन को समझे जिहड़े प्यार वाले हैं सालसराय वर्गे, वो फिर कीर्तन की भेट कर दे। भेट परवान चाहे लख करे चाहे तक, जिहड़ा मुल पांदा है या मुल पवांदा है वह भुल पे प्रधानी। मेरे सिख जिहड़े हैं वह बाणी का मुल नहीं पाते, भेट कर उन्हों की भेटा गुरु नानक के दर से मालिक के दर से प्रवान हो जाए, क्योंकि कीर्तन जिहड़ा है यदा मुल कीर्तन की है अजुर बाणी प्रवान।

उसमें मूल है। वेचण वाला भी वेच के वस्तु खुश हो जाता है, लैण वाला भी लैके खुश हो जाता, पर यह अमूल जिसे को वस्तु आ गई होगा जीवन भी अमूल हो गया। निर्मोल धागा वाले हम गुरु जिन्हों की चोली च मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी ने निर्मोलक हीरे कीर्त की दात पाई। गुरु धरोहर साहे हुए स्टार कीर्तन सिंह जी सहित परिवार बाबा जी बाबा आनंद सिंह जी महाराज जी ने बच्चे से बड़ी की, इन्होंने बुजुर्गों ने बड़ी सेवा की, पूर्ण महापुरुष के दर्शन प्यारी साध संगत जिसमें हो जान, पर प्यारी साध संगत साध के संग नहीं किसी काल दर्शन पेशत हो। विस्तार बलजीत सिंह जी नौजवान बच्चे जिन्हों की चोली च गुरु नानक ने निर्मोलक हीरा कीर्तन पाया, अज उन्होंने उद्यम के नाल आप सारे बड़े एडा उपकार। सर बलजीत सिंह बरपुरदार दास नू जब मिले गुरुद्वारा साहब कह लगे भाई साहब कलकत्ते भी तेरा कीर्तन कर कराया, कह लगे मैं छोटा सा उदों भी बड़ा आनंद आया सी, गुरु ने फिर इतने दर्शन करा दिते, उस वेले दे पढ़े शब्द उन्होंने याद कर सच बड़ी बख्शिश है बड़ी रहमत है। उन्होंने पिता जी सरदार गुरदीप सिंह जी उन्होंने दसे है कि भाई साहब ये सब धन गुरु नानक की कृपा, नहीं तो बलजीत जिस वेले यूनिवर्सिटी विचों डिग्री लैन लगा उतों के जेड़े अफसर सन सारे ने कहा भी डिग्री त मिल सकती है जे सिर ते पग ना बने, मानो केस कटाने पे साड़ी यूनिवर्सिटी का ला। उन्होंने पिता जी ने दास नूं दस्या कि बलजीत सिंह ने कहा भाई मैनू डिग्री की लोड़ नहीं है, मेरू सिखी की लोड़ है, आखो श्री वाहिगुरू। एक नौजवान बच्चा सिखी नाल प्यार कीता, उन्होंने फिर उचेचा यह ला पास करना पाया कि पग वाले यूनिवर्सिटी विचों डिग्री प्राप्त कर। अभी तो छोटिया छोटिया गलों से सिखी नहीं विदावा लिख के दे दें, पर साडे बुजुर्गों ने तो खून दिया नदियां वहा के भी सिखी नूं कायम रख जंगलों में रह वो क्या रहे रोज अरदास कर दे रोज कितनिया शहीद माताओं भैं बच्चिया जिन्हों की रोज अरदास होंगी वो अमर हैं, जिन्होंने अमर वस्तु रूप प्राप्त की दुनिया के पदार्थों ने की साडा सवाल जोड़ा कूड़े पदार्थों प्यार करेगा वह कूड़ा है। अमर सिखी भाई तारू सिंह साहब जालिम ने हुक्म दिता है केस कट दे, भाई तारू सिंह कह लगा ये केस मेरी कलगीधर पातशाह की अमानत है, ये गुरु की बख्शिश, इन्हों केसा कुछ ना कर फिर मेरी खोपड़ी उतार दे। कितना प्यार सुहागणी स्त्री भी अपने पति नूं प्रसन्न करने वास्ते सिंगार कर दी है, मेरा पति खुश हो गया दुनिया खुश हो गई, कलगीधर पातशाह जी का सिख जिहड़ा है वह भी सिंगार करता है, जिस तरह कलगिया वाला खुश होवे वह भी सिंगार करता है। तो यह सिखी ये सोहने केस के सोहना दाड़ा ये तो

सर्व कर्ता के ताते स्वामी देह सुपहरण खाओ देह सुपहरण खाओ कब निरन कब निरन